संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एकी पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जा

ताई शेर बना के जूस अणक दा भर के अर्जुन तो मरवाए कैरों निगाह मेहर दी करके अर्जुन तो मरवाए कैरों निगाह।

भूतबरंदय के विभूत करंदय के राजम प्रभा है के तरमंग तुजा है के अशोक बरने के सर्वाया परने के जगतन कृति है के सतरंग सत्री है के ब्रह्मंग सरूपे के अनुपयानूपे के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के अधीन है के रुजी रजा के

जियो बहुते जन्म परमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे विट दाता को नहीं सब सुनयो लोक सबाया सतगुर मिलिए सच पाया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बड़भागिया सुहागणी जिन्हें गुरमुख मिलिया हर राय अंतरे जोत प्रगासिया नानक नाम समाए बाबा सतगुर पुरख है जिन सच जाता सो ए जित मिलिय तिखी उतर तान मन शीतल होए बाबा।

ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी स माहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उ माहा, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी क्या होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी क्या एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी क्या बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी क्या नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल बंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बलबल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेसर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सकल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदाया देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सा जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सभी ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक, उर धारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक ओ परस सगल निस्तारै अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना।

जब आकार इव कशना दिष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध की संकमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हर कसोग कह कहो किसे व्यापत जब अपने आप या पारबम तब मोह कहा किसोवत भरम आपन खेलिया वर्ती जाना न करना हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किसको गणी जब एक रगम अपार तब नरक सुर्ग को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब सिर सकत कहो हो गित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरै तब कव निडर कवन कत डरे अपने चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखी अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो हो किश होए जब अवगत अगोचर बाबेका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आप ही है चर्जा नानक अपन रूप आप ही हो परजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बाड़ तह कौन कौ मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तै किसे भूख कवन तृप्तावै करण करावन करण हार नानक करते का नाए सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्ब कला पेपर बीन तै वेद कतेब कहा कूचीन जब अपने आप आप उतारै तो सगन अपसगन कहा बिचारै जय अपन ऊंची अपने आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रह बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जया छल अछेद भेद समाया उहां किसे व्यापत माया आपस कहो आपे आदेस तेह गुण का नाही प्रवेश जय एक है कि एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता जय अपने आप आप पतियारा तह कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेंतू चिति ऊचा नानक आपस कहो आपे पहूचा जय आप रचियो पर पंचयाकार ते गुण मैं किनो विस्तार पाप ते पई कहावत को नरको सुर्ग बंछावत वाल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख माने अपमान अनक प्रकार की ओ बख्याण अपन के लाभ कर देखै खेल संकोचै तो नानक एकै जय अवगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दुह पाका पे तनहीन कोई शोभा उन्हू बनी आप है कौत करे अनद चो जे आप रस भोग निरजोग जिस भाव है।

बंधन तोर पै निर्वैर दिन पूजे गुरु के पैर लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मिले। साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत गुरु विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत भजन के गुण गाओ प्राण तरण काय सुहाओ आड़ पैर पापे कोने राम मिटाया ज्ञान बिन सह अंधेरा सुन उपदेश दैब सावो मनीषे नानक फल पावो हालत पलत दुई ले सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसै ते साज परीखिया मन तन नाम जप होले बुलाए दुख दर्द मन ते भौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निबह खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन वाहे नानक बहुर न आवै जाए तिस्ते दूर कहा को जाए उबै राखन हार त्याय निर्भौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै सुनाही दुख नाम जपत मन होव सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तुस जन का कोई न पहुँचन हार श्री उपर ठांडा गुर सूर नानक ताके कार्ज पूरा मात पूरी अमृत जाके दृष्टि अमृत दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान तरजामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोत निहाल ताके निकट नियावत काल मर भय मरावत पाया साध संग नानक हर त्याया श्लोक ज्ञान जन गुरदिया ज्ञान अंधेर विनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदी संत संगे अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समगरी एक घट माए इनक रंग नाना दिष्टाए नवनित अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाध अनत है नाद कहन न जाई आचार्य विसमात देखिया जिसे आप दिखाए नानक जिन सो जी पाए सोय अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रह भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल बाण तिन पर्वत है पाद ऐसा कर पौन पानी बह संतर माए चार कुंड तै दिसे समाए तिस्ते भिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नान सुख पाओ वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिया सूर नखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आपे डोल न कबू डोलै सर्व कला करखी लै खेल मोल न पाया गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाके जो धार रहे स्वामी ओत बोध गुर प्रसाद भ्रम का नास नानक तिन मैं हूं बेसास संत जना का पेकन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुन सब वचन सर्व्यापी राम संग्रचन जन जाता सकिए रहत सत वचन साधु सब कैत जो जो हे सोई सुगमान नै करण करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात भावै ता करे विस्तार भावै ता एक विस्तार तिस भावै ता करे विस्तार भावै ता एक अंकार अणकला रखी न जाय जिस भावै सलै मिलाय कौन निकट कौन कहिए दूरे आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिसे आप बिनाए नाम सिने आप बुझाए सरभूत आप वर्तारा सब न्याणे आपे कणहारा सगल समगरी जाका तने आपन जासे आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आग्या कारी गिनी माया सब कह मा दिल तो रह जो किश कहना सो आपे कहे आग्या आवै आग्या जय नानक जा भावै ता लय समाए इसे हुए सो ना ही बुरा हो रहा कहो कि न कश करा भला करदूत अतनी की आपे जाने अपनी जी की आप साज धारी सब साज ओत पोते आपन संगराज तस्कीगत मिल कही ना जाए दूसर हो सो जी पाए तिसका किया सा परवान गुर प्रसाद नानक हो जाड़ जो जाने तिस दास कोए आ मिलाए लै प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसे दे भगवंत धन धन धन जने आया जिस प्रसाद सब जगत राया जने अवन कह सुहाओ जन कह संग चते आवै ना आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक जन कहो सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरहो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हार धन के पर लेहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद निरक निवारो धारो जियो गुण गोविंद।

0: अगुण भरे एक गुण नाही,
1: अमृत शाड बिखै बिख खाई,
0: माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत यम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की